आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: ओसम

ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: ब्यूटिफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. मंडे का दिन सितंबर 28th. कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है भाई? महीना खत्म होने वाला है, ये वाला भी क्रेजी भाग रहा है वक्त तो यार. खैर उस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके बारे में बात करते हैं. कैसे हैं आप, कैसा था आपका कल का दिन और इस वक्त क्या कर रहे हैं? वक्त है तो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो यार 3311 1063 पर. देयर इज अ लॉट इन स्टोर टुडे. सो आज हम लता मंगेशकर जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. रणबीर कपूर का बर्थडे है आज. अलॉन्ग विद दैट मूवी टिकट्स भी तो देनी है आपको. सो काफ़ी कुछ लाइंड अप है आज.

जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में काफी ड्रीमी और विम्सिकल सा गाना। इसका वीडियो भी ना वैसे सही बनाया इन्होंने, एंड व्हेन दिस सॉन्ग स्टार्ट्स ना ऐसा लगता है टेलर स्विफ्ट का कोई गाना चल रहा है, स्पेशली दैट लवर। यस, वैसी सी फील्स है इसकी, और मुझे भी सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए मैसेजेस के बहाने। फुल गाना है यार ये तो।

और ये सब कमाल के गाने लाइन में आपके लिए इस घंटे में, और ढेर सारी बातें करनी है आपसे। फिलहाल आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो जरा संभल के करिएगा, विजिबिलिटी थोड़ी खराब है क्योंकि काफी फॉगी, काफी मिस्टी वेदर है, क्रेजी ह्यूमिड भाई साहब। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, और सुनते रहिए रेडियो ऑल।

0: Olive Tunnel Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस दिन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।

0: खट्टा मीठा मूवी से के और सुनिधि चौहान की आवाज में बड़ा ही सुंदर गाना। मूवी वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। इफ यू हैवंट वॉच, एक वॉच तो कर ही सकते हो, पर दिस ट्रैक सो ब्यूटीफुल, सो प्रोफाउंड एंड सो डीप। काफी सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में हम इस गाने को फिट कर सकते हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड वी हैव गॉट मैसेजेस। नाजरी जी का मैसेज आया है, कहती हैं, एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू पोटेंशियल, बट इफ यू ड्वेल ऑन द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द डे बिफोर, यू टेंड टू ओवरलुक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज। दैट इज सो ट्रू। एज आई ऑलवेज से, रात गई बात गई यार, जाने दो, छोड़ो, क्यों कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आना है। अब राज जी का भी गुड मॉर्निंग आया हमें चाय के कप के साथ, कॉफी एक्चुअली, कॉफी के कप के साथ। एंड शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, कहते हैं, अप्रिशिएट ऑल दैट यू हैव टुडे, योर फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, लाइफ एंड द जर्नी स्टिल अहेड ऑफ यू, विद अप्रिसिएशन कम्स हैप्पीनेस। दैट इज सो ट्रू। अलॉन्ग विद दैट ग्रेटफुलनेस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जुल्फी जी का मैसेज है, नेवर डिस्कस योर सक्सेस एंड नेवर वरी अबाउट योर फेलियर, बिकॉज बोथ विल इफेक्ट योर नेक्स्ट स्टेप, बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, खुद पे भरोसा होना चाहिए। बाकी दुनिया नहीं कर रही है, दैट्स देयर प्रॉब्लम। यू नीड टू, यू नो, हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड संतु जी का मैसेज है, गुड दिवाली मॉर्निंग है जी। साथ में वी हैव गॉट मैसेज फ्रॉम मोहम्मद इदरिस जी, गुड मॉर्निंग सिस्टर, हैव अ नाइस डे। यू टू इदरिस जी, आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे। बिलाल जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हू इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। नहीं मैसेज कर पा रहे हो इस वक्त, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, जब मौका मिलेगा तब एक प्यारे सा गुड मॉर्निंग भेज देना। फिलहाल आपके लिए भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: कूल सॉन्ग।

0: तनिषा
1: तनिषा रहना है तेरे दिल में मूवी से बॉम्बे जयशो की आवाज में बड़ा सुंदर गाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है काफी सटल तरीके से जो बात कहनी चाहिए कह दी और क्या दिया मिर्जा लग रही थी इसमें क्रेजी यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी जी हाँ लता दीदी की बर्थ एनिवर्सरी है टुडे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं क्या खूबसूरत काम किया क्या खूबसूरत आवाज थी यार उनकी मतलब किसी भी गाने को छू लेना इट टर्न्स इनटू गोल्ड ट्रूली उन्होंने पता है 30,000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए इन ओवर 36 लैंग्वेजेस शेड वन भारत रत्न एंड लॉट मोर अवार्ड्स इतने सारे अवार्ड्स हैं कि काउंटिंग छोड़ो यार क्या ही वी नो दैट शी वॉज लेजेंडरी और उनका जो काम है वो आज तक हमारे जहन में हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने उन्होंने हमें दिए हैं ऐसा ही एक खूबसूरत गाना अभी मैं यहाँ पे प्ले करने वाली हूँ आपके लिए वो कौन थी मूवीज से 1964 में जो आई थी लग जा गले यार बड़ा ही सुंदर आई थिंक जनरेशंस तक ये गाना ना फेवरेट रहने वाला है बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल हाउ ब्यूटिफुली इट टॉक्स अबाउट the longing ki we never know if we are going to meet ever again or not and Sameer Anjan sahab iske bare mein baat karte hain to batate hain ki bhai Madan Mohan ji ne jis tarah ki composition banayi hai is gaane ki aur saath mein Lata ji ki awaaz ne jo isme char chand lagaye the kamal koi aur nahi kar sakta tha wo magic so without talking much about it let's enjoy this beautiful track lag ja gale only on radio olive ji

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्डन डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई।

0: हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM
1: जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha.
1: करण औजला की आवाज में सॉफ्टली ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं अब. क्या लगता है, क्या ये लाइक करने जैसा वेदर है? बिल्कुल भी नहीं है. इट्स 32 डिग्रीज राइट नाउ एंड इट फील्स लाइक 42 डिग्रीज. फिर से आ गई है अपनी वारी पे. अलॉन्ग विद दैट इट्स क्रेजी ह्यूमिड, क्रेजी यू नो मिस्टी हेजी. सो प्लीज़ ख्याल रखें अपना. और आज जो है हाईएस्ट टेम्परेचर 40 जा सकता है, लोएस्ट विल बी 31. और बहुत सारा पानी पीते रहिए, बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी निकलिएगा, दिन की बात कर रही हूँ. अभी देखो काम पे तो जाना ही है, ये मत कहना कि तनिषा ने कहा बाहर मत निकलो तो आज छुट्टी कर लेते हैं. बॉस आपका ना मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी भी नहीं मानता है मेरे तो. सो इट्स ओके, काम वाम पे जाइए, अपना ख्याल रखिए. वॉट एवर प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड ना, प्लीज़ वो लेते रहिए. बढ़िया अच्छे से बहुत सारा पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड एंड चिल करो यार. और क्या, क्योंकि यू नो सेहत है तो सब है. व्हेन यू आर फीलिंग अनवेल ना, तो आसपास 10 बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही होंगी, यू विल नॉट फील लाइक एंजॉइंग इट. दैट इज़ वाई अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है मेरी जान. ठीक है, मुझे ही देख लो, एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ये कोल्ड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन, ओनली दिस यू नो कोल्ड और मेरी ये आवाज़ क्रेजी हालत हो रखी है. सो प्लीज ख्याल रखिए अपना. ठीक है, सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास.

0: इसकी प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और मेट्रो इन दिनों से बड़ा ही कमाल का गाना धागिना तनक दिन सुना आपने. सो दोज हु वांटेड यू नो स्पेशल व्हीकल प्लेट नंबर्स, दिस इज द टाइम फॉर यू. 1st October डेट याद रख लो, थर्सडे का दिन सुबह 10 बजे सोम ऐप के थ्रू आप न्यू स्पेशल व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर द नंबर्स. सो जो एक्सप्रेस इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है ना, वहां पर आपको ये अवेलेबल होगा. सो जाके चेकआउट कर लीजिएगा. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू नो यू हैव टू चूज अ नंबर, सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर देना है एंड 24 आवर्स में इंटरनल ऑक्शन होगा. अगर एक ही इंटरेस्टेड बायर हुआ तो वो लिस्टेड प्राइस पे सोल्ड हो जाएगा, और अगर मल्टीपल बायर्स होंगे तो हाईएस्ट बिडर के पास वो नंबर चला जाएगा. नाउ ऑन दिस ऐप यू कैन आल्सो ब्राउज स्पेशल प्लेट्स बाय 1st, 2nd, and 3rd कैटेगरीज. यू नो आप स्पेसिफिक नंबर भी सर्च कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी और उसका करंट प्राइस क्या है वो चेक कीजिए, उसको फेवरेट्स में ऐड कर दीजिए और उसकी जो बिड्स है और ऑक्शन है वो स्टेटस जो है उसका वो ट्रैक करते रहिए. सो दैट आपको पता रहे कि वो अभी भी अवेलेबल है या नहीं, प्रोग्रेस में है या फिर अब है ही नहीं, चला गया है ऑलरेडी. सो गुड लक. 1st October सुबह 10 बजे सोम ऐप याद रखिएगा. सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका मधु शर्मा की आवाज में. अरे प्यार के लिए दिल ही तो है, दिल ही तो है, पर बड़े बड़े पंगे भी तो यही करा देता है. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल एफ 3 बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit. शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट

0: डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. बप्पी लहरी और आयुष्मान खुराना की आवाज में शुभ मंगल. ज्यादा सावधान से अरे प्यार कर ली सुना आपने. बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर तनीषा आपके साथ. और कल हमने बात करी थी कि अरेबियन गल्फ कप जो हो रहा है उसमें कतर और यमन का मैच है. अगर उसमें कतर जीत गई तो उनकी पोजिशनिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी और हो चुका है. यस 27th अरेबियन गल्फ कप जो जेडा में चल रहा है इस वक्त 27 सितंबर यानी कि यस्टरडे वाज कतर और यमन का मैच और उसमें कतर जीत चुके हैं. जी हाँ. और ये जो विक्ट्री है इसने कतर को 6 points ऊपर कर दिया है फ्रॉम 2 ग्रुप B मैचेस putting them at the top of the group at the time of reporting and moving them closer to semi-finals. इसके पहले जो मैच हुआ था वो बहरीन के साथ हुआ था और उसमें भी कतर ही जीती थी. That was the opening match. अब जो अगला मैच है कतर का उसमें UAE को फेस करेंगे वो 30th of September को. So भाई बधाइयां जी बधाइयां. और इसी बात पे एक जबरदस्त हिट प्ले करते हैं सुंदरी रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ, केके की आवाज में क्या मुझे प्यार है, ब्यूटीफुल गाना वो लम्हे मूवी से सुना आपने. एंड टुडे इज रणबीर कपूर्स हैप्पी वाला बर्थडे. और अभी जो मैं गाना चलाने वाली हूँ, इट इज हिज डेब्यू मूवी का गाना, सावेरिया का टाइटल ट्रैक, शैल हाडा की आवाज में. सो इट्स अ फनी स्टोरी हाउ रणबीर कपूर गॉट दिस मूवी. सो संजय लीला भंसाली पहले चाहते थे कि प्रतीक बब्बर को इसमें कास्ट किया जाए. ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम. उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया प्रतीक बब्बर के, और उनके ग्रैंडफादर ने पिक किया. एंड ही मेड सम एक्सक्यूज, और प्रतीक को पता भी नहीं चलने दिया कि यू नो ही गॉट दिस मूवी. कुछ सालों के बाद प्रतीक बब्बर को पता चला कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, संजय लीला भंसाली वांटेड टू कास्ट मी, सो ही कुड नॉट डू दिस मूवी. एंड दैट्स हाउ इट वेंट टू रणबीर्स किटी. एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब रणबीर कपूर इस मूवी को छोड़ देना चाहते थे, क्विट करना चाहते थे, क्योंकि संजय लीला भंसाली उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे. एंड ही वॉज नॉट लाइकिंग दिस एटीट्यूड. यू नो संजय लीला भंसाली वुड स्कोल्ड हिम, पनिश कर रहे थे उनको सेट्स पे सबके सामने. बट आगे चल के रणबीर को समझ आया कि यू नो उनका जो एक्टिंग का स्किल है उसको फिनिश करने में संजय लीला भंसाली के उस यू नो बिहेवियर का कितना बड़ा हाथ है. एंड ही थैंक्स हिम फॉर दैट. और सोनम कपूर और रणबीर कपूर की डेब्यू मूवी थी ये, फ्लॉप हो गई थी क्योंकि ऑपोजिट में भाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम वॉज रिलीज्ड. 2007 की जो दिवाली थी उस पे ये दोनों मूवीज रिलीज हुई थी, ओम शांति ओम एंड सावेरिया. एंड सावेरिया वॉज अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट डू वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन रणबीर कपूर ने अपना मार्क तो बना दिया था भाई. उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक. और काफी सारे इस मूवी में जो एस्पेक्ट हैं रणबीर कपूर के कैरेक्टर के, वो उनके ग्रैंड फादर राज कपूर से यू नो बोरो किए गए हैं. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. वी नो अभी लव एंड वॉर आने वाली है संजय लीला भंसाली के साथ ही रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की. फिलहाल सुनते हैं सावरिया मूवी से टाइटल ट्रैक विशिंग रणबीर कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास.
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो,
2: जब से तेरे नैना,
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार,
3: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं,
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है. यहाँ पर सिद्रा मेडिसिन ने लॉन्च कर दिया है पीडियाट्रिक होम विजिट्स, एंड इट इज सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव. मैं बताती हूँ क्यों. सो इट इज बेसिकली पीडियाट्रिक प्राइवेट होम विजिट्स वेलनेस एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. कल 27 सितंबर को ये लॉन्च किया गया है, और इस सर्विस के थ्रू एलिजिबल चिल्ड्रन जो है दे कैन रिसीव रूटीन चेकअप्स एंड स्केड्यूल्ड वैक्सीनेशंस एट होम इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द हॉस्पिटल. कितना अमेजिंग इनिशिएटिव है ये. एंड इस होम विजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा मैं बताती हूँ. रूटीन वेलनेस असेसमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग होगी, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन गाइडेंस, पेरेंट एजुकेशन एंड गाइडेंस, रूटीन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशंस. एंड हु ऑल कैन यूज, ये जितने भी एलिजिबल सिद्रा मेडिसिन के पेशेंट्स हैं उन सबके लिए है. एंड ईच रिक्वेस्ट इज क्लिनिकली रिव्यूड फर्स्ट टू डिटरमाइन वेदर अ होम विजिट इज सेफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड. एंड अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली. बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है सो दैट यू नो रूटीन पीडियाट्रिक केयर मिले बच्चों को, इंस्टेड ऑफ यू नो जब ही इमरजेंसी हो तभी जाया जाए. नो, अगर रूटीन में हम ये चीजें फॉलो करेंगे कुछ भी और ज्यादा यू नो बड़ा होने से बचा सकते हैं. पीपल कैन कॉन्टैक्ट सिद्रा मेडिसिन इफ यू आर एलिजिबल टू इंक्वायर अबाउट दिस सर्विस. आई एब्सोल्युटली लव दिस इनिशिएटिव बिकॉज यू नो हम आदत है हमें कि जब तक कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेजी नहीं हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, बॉदर नहीं कर रहा है, वी डोंट गो टू द डॉक्टर्स. सो इट्स बेटर कि रूटीन चेकअप्स अगर घर पे ही हो रहे हैं तो मे बी और ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा. संद्रे रेडियो लिव जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
2: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
4: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
5: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
6: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

Sarah Sardar to say Nazar Vattu in the voice of Jubin Nautiyal only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindaas Mornings chal raha hai yahan par aur bhai Doha Jewelry and Watches Exhibition jo hai wo start ho chuka hai since yesterday aur isme 30 plus international jewelry aur watch brands aapko dekhne ko milenge. DECC mein ho raha hai 28 September se lekar 3rd October tak chalne wala hai and this is the 22nd edition jahan par 49 exhibitors are representing over 500 brands. So kafi कमाल है. सम ऑफ द पीपल फ्रॉम आर टीम वेंट यस्टरडे और काफ़ी तारीफ हो रही थी उसकी. बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस ज्वेलरीज आपको यू नो वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगी. वॉचेज आर देयर, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर लग्जरी पीसेस. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, डू गो एंड चेक इट आउट. DECC में 3rd अक्टूबर तक ये चलने वाला है और अल मुफ्ता जो है दे यूज दिस एग्जिबिशन टू इंट्रोड्यूस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड दे ऑल्सो लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स दैट एड टू इट्स इंटरनेशनल ब्रांड पोर्टफोलियो. दे हैव बीन इन कतर सिंस 1984. इस बार का जो एग्जिबिशन है वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू कतरी डिजाइंस, टर्किश एंड इंडियन पवेलियंस एंड देर विल ऑल्सो बी यू नो टॉक्स, वर्कशॉप एंड पैनल डिस्कशन फीचरिंग jewelry and watch industry experts. So if you love jewelry and watches, this one's for you.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
0: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
0: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपर मार्केट।
2: Where the world comes to shop.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: बस मेरे लिए।
1: तनिषा
2: विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान की आवाज में शब्द मूवी से शोलो सी, जिसमें ऐश्वर्या राय थी। और अब हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय की इकलौती मूवी दैट इज ए दिल है मुश्किल के बारे में। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक स्पेशल मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगी इद्रिस जी के लिए, जो बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी करते हैं। ही हैज सेंट मी पिक्चर्स और यू नो दोहा की खूबसूरत खूबसूरत फोटोज, लाइक सनराइज सनसेट की पिक्चर्स लेकर, एंड जो खूबसूरत इमारतें हैं यहाँ पर उनकी भी बहुत बढ़िया पिक्चर्स उन्होंने क्लिक की हैं। एंड उन्हें बुरा लगा कि मैंने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया। आई एम सो सॉरी इद्रिस जी, वी आर गेटिंग योर पिक्चर्स एवरी डे एंड वी आर चेकिंग देम आउट और हमें बेहद पसंद है, सो भेजते रहिए, अच्छा लगता है। कमिंग बैक टू रणबीर कपूर बर्थडे, सो करण जौहर वॉज लाइक फुल सेट कि रणबीर तो चाहिए ही चाहिए मुझे इस मूवी के लिए, एंड ही वॉज सुपर एक्साइटेड कि ऐश्वर्या आ रही है, बिकॉज इसके पहले ही हैड ट्राइड टू गेट ऐश्वर्या फॉर सो मेनी डिफरेंट मूवीज, यू नो कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, कभी खुशी कभी गम, बट कभी भी चीज़ें काम नहीं करी, लाइक यू नो कभी टाइम नहीं था और कभी ऐश्वर्या बिजी थी, कभी करण को वक्त नहीं मिल पा रहा था, सो यू नो थिंग्स केप्ट हैपनिंग। And then this one, he got Aishwarya finally and he was over the moon. And same was the case with Ranbir Kapoor. He was super excited. But jo chemistry Anushka Sharma aur Ranbir Kapoor ki hai, on screen and off screen, it is commendable. Wo jo do crazy best friends hote hain, wo wali jodi, unko Kapil Sharma ke show mein dekha tha maine. Then there are few interviews I've seen. Crazy, बहुत ही कमाल। Also, they are too comfortable with each other. By the way, इस movie में जो एक छोटा सा part है जहाँ पर रणबीर कपूर का character जो है अयान, वो गा रहा है गाता रहे मेरा दिल song, वो रणबीर ने खुद गाया है, एंड रणबीर regrets it. He's like, क्या गंदा गाया है यार, क्यों गाने दिया है मुझे ये, but yeah, he did that and what a beautiful movie it was यार, ए दिल मुश्किल बहुत सुंदर मूवी, और रणबीर कपूर का काम, द साउंड ट्रैक, ऐश्वर्या इतनी ब्यूटिफुल लगी है, everything was amazing about that movie. Also, the next track which I'm sending is from ए दिल मुश्किल, cutie pie, stay tuned on Jio Bindaas.
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो,
3: जब से तेरे नैना,
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार,
4: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं,
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
4: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
1: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
5: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

लता मंगेशकर की आवाज में ब्यूटीफुल गाना लुका छुपी फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती। तनिष के साथ हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। सो 1983 में जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी तब बीसीसीआई के पास फंड्स नहीं थे उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए। तो गेस व्हाट, लता दीदी केम टू सेव देम, टू फैसिलिटेट देम। जी हाँ, सो बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, स्पॉन्सर्स ने मना कर दिया कि नहीं हम तो कुछ नहीं देने वाले हैं, गवर्नमेंट तक ने हाथ उठा दिए थे। एंड ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर जो थे बीसीसीआई के, ही वेंट टू लता दीदी बिकॉज उन्हें पता था कि लता दीदी जो है वो क्रिकेट और देश दोनों से बेहद मोहब्बत करती है। सो इसी इमोशन के साथ वो उनके पास गए थे और इसमें हेल्प करने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया अपना। एंड वहाँ से उन्होंने 20 लाख जो है वो जनरेट किए फंड्स और वो फंड्स गए थे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को। सो दैट इज लता दीदी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सच एन आइकॉनिक सिंगर, वो हम सबकी ही तरह एक क्रिकेट लवर भी थी, उन्हें सीआईडी देखना भी बहुत पसंद था। She was so cool. उनके इंटरव्यूज देखोगे ना तो you'll get to know the personality. It was so iconic and so cool. On that note, sending a beautiful track your way. Stay tuned, Andrea Vindas.

0: निशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰ ਦਿਸ ਆਵਰ
1: ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਚੂ ਮਨਾਉ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕੋ ਚਲੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਲਿਆ
0: ਦਿਸ ਵਨਸ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਟਰੈਕ वेल अभी वक्त हो गया है मूवी टिकट्स देने का. जी हाँ, दृश्यम द कंक्लूजन जो आ रही है इस वीकेंड और 3 अक्टूबर सैटरडे को हम साथ में देखेंगे दोपहर 2 बजे. उसके लिए अगर आप टिकट्स जीतना चाहते हैं तो सुनिए मेरा सवाल. मैं एक डायलॉग सुनाने वाली हूँ आपको. अजय देवगन की ही मूवी का डायलॉग है, पर कौन सी मूवी का है ये आपने मुझे बताना है.
2: बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, बॉय अंडर रैंप पैटर्न, हाइपर सिटी, नॉइस पोल्यूशन.
0: जी इतनी क्रेजी इंग्लिश कौन सी मूवी में बोली थी अजय देवगन साहब ने, ये आपने मुझे बताना है.
2: बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, बॉय अंडर रैंप पैटर्न, हाइपर सिटी, नॉइस पोल्यूशन.
0: 3311063 पर बताएं या फिर कॉल कर दे 4444106 पर. दिस मूवी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फिल्म मास्टर यूएई, जो कि हम देखने वाले हैं 3 अक्टूबर सैटरडे को दोपहर 2 बजे. कहाँ पर वो आपको बाद में पता चलेगा. फिलहाल आप जवाब दीजिए कि कौन सी मूवी का डायलॉग अभी मैंने प्ले किया है और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
3: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
4: जब से तेरे नैना,
3: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
5: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं.
3: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: Rockmore. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
1: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
3: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: लता मंगेशकर की आवाज में मेरे ख्वाबों में जो आए फ्रॉम द मूवी डी डी एल जी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर
2: बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा बॉय अंडर रैप पैटर्न हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन
1: यही डायलॉग सुनाया था मैंने और आपसे पूछा था कि कौन सी मूवी का डायलॉग है सही जवाब दिया तो आपके पास मौका है जीतने का कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम द कंक्लूजन जो इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है और हम देखेंगे साथ में 3rd of October को दैट इज सैटरडे को दोपहर 2 बजे एंड आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर और वो सबने करेक्ट आंसर दिए हैं बस एक ही गलत है But that is okay, happens. So we've got answers from Naveed, Seema, Yash, Gaurav, I am Mohammed, and we have Abner, we have Hasnain, we have Varushi, Badri ji ka message hai, saath mein Shahbaz ka message hai, then there is Sandeep, there is Aisha, and yes, the correct answer is Bol Bachchan, usi mein itni crazy angrezi boli hai, Ajay Devgan ne. By the way, we have 2 lucky winners, so the lucky winner who have won couple movie tickets today are Gaurav and Seema ji. Congratulations to both of you. Farafat se apna QID mujhe bhej dijiye. Yahi WhatsApp kar dijiye and we will give you a call when to collect your tickets. Aur sunte rahiye Radio Olive, Jio Bindaas.
0: Ab suniye, Olive ka Zabardast Hit.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Z Studios.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
9: इन एसोसिएशन विद
8: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

सुखविंदर सिंह की आवाज में मीनाक्षी मूवी से बड़ा ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और भाई रिमाइंडर देने आई हूँ कि अगर अभी तक नहीं फॉलो किया तो फटाफट से कर लो, कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, मिस आउट कर जाओगे। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया वाउचर्स भी जीत सकते हैं, मूवी टिकट्स भी वहाँ से जीत सकते हैं। सो रेडियो ऑलिव डॉट QSD हैंडल इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लो, फटाफट से जाके पोस्ट चेकआउट करो, उनसे इंटरेक्ट करो, लाइक शेयर कॉमेंट करो और मौका पाओ जीतने का कुछ कमाल के तोहफे। इट इज़ ऑल फॉर यू। सो अगर आप तक नहीं पहुंच रहे तो पर्पस किल हो जाएगा ना, दैट इज़ वाई आई कीप रिमाइंडिंग यू। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल, रेडियो ऑल्व का जो चैनल है वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया से यू नो कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही में रेडियो ऑलिव का ऐप डाउनलोड करके रख लो सो दैट कभी भी आप हमसे डिसकनेक्ट ना हो। हाँ जी, यही तो चाहते हैं आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। सेंडिंग मोहित चौहान की आवाज में जब भी मैं से तुमसे ही, स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास।

0: संडेज आने दो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

चोर निकल के भागा मूवी से, बड़ा सुंदर गाना जानी है उंगलियां रेडियो 106.3 FM तनीजा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वेदर थोड़ा सा यू नो ह्यूमिड है, फॉगी है, मिस्टी है, सो बी वेरी केयरफुल, प्रिकॉशंस लीजिए, अलॉन्ग विद दैट हमें फॉलो करते रहिए और कोई भी बात जहन में होना तो बिना किसी हेजिटेशन के हमसे शेयर कर सकते हो यार। हम यहाँ पे आपको कमाल के गाने सुनाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए हैं, आपको सुनने के लिए भी हैं। जी हाँ, 3311-1063 इज द नंबर, यू कैन मैसेज अस एनी टाइम, यू कैन ऑल्सो कॉल 4444-1063 पर। जाते जाते खूबसूरत गाना छोड़कर जा रही हूँ, मुसाफिर कैफे से तेरा हुआ साहिबान इन द वॉइस ऑफ गर्वित प्रियांश एंड हंसिका। Also, have an amazing day to yourself. Take care of yourself. You're very important. Do not forget that. Arsindri, you're really all up to you, Bindas.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

भाई साहब इतनी ज्यादा खूबसूरत गाने भी एग्जिस्ट करते हैं क्या? या मुझे लगा था कि ये भी डायनासोर्स के साथ जो है वो गायब हो चुके हैं कब का। लेकिन एक इंसान है जो अभी तक गायब नहीं हुआ है, वो है आपकी कशिश। हर रोज आपको एंटरटेन करने के लिए आ जाती है 106.3 रेडियो एलएफ पर। लाइफ मस्त है शो लेकर, जहां हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आज वही जो है हम करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग फन, फॉलिक, मस्ती एंड मजा। साथ में आज कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों का हैप्पी वाला बर्थडे है, सो वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आप उन लोगों से बर्थडे जो है वो शेयर कर रहे हैं, सो जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए। अगर आपका कोई लव्ड वन शेयर कर रहा है बर्थडे, सो उनका नाम भी हमसे शेयर कर दीजिए 3311063 पर। फिलहाल जो है शो की शुरुआत जो है हम उस चीज से करेंगे जो बिल्कुल हमें, जिस चीज के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, और गाने का नाम है बरसात। जिन लोगों को मेरा जोक समझ आया उनको मेरा जोक समझ आया, बाकी थोड़ी सी देर में मौसम के मामले पर भी बातचीत करेंगे, तो जिन्हें जोक नहीं समझ आया उन्हें मैं डिटेल में समझा दूंगी। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाइए, आपकी कशिश के साथ गाने इंजॉय करते जाइए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12, दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: आने दो बहुत जगह है. आने दो केक्स. आने दो संडेज. आने दो बहुत जगह है.
4: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी. जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में. इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर. डोंट मिस आउट.
0: आई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.

0: चांद मेरा दिल मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ अस। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, एक ही तरीके से जो है मुझे सर्दी आ रही है, जब मैं ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस पी लूँ तो मुझे सर्दी जो है वो हो जाती है। बाकी किसी तरीके से सर्दियों के आने का मुझे कोई भी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही। वैसे तो लोग मुझसे कह रहे हैं, जो लोग कतर में बहुत वक्त से रह रहे हैं, कि यार कशिश बस अभी एक हफ्ते में जो है वो विंटर वाला जो एक मौसम होता है वो आ जाएगा, समर जो है वो फाइनली चली जाएगी। लेकिन मैं जो है मान नहीं पा रही हूँ ये बात को, क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन पे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है इस वक्त। दोहा का करंट टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, जो कि ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है। एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर 40 से नीचे आ ही नहीं रहा है। सो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको सनस्क्रीन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमिडिटी से भी आपको जूझना पड़ेगा। बाकी और क्या रहने वाला है ये जो है कतर मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो जल्दी बताएंगे कि यार क्या आगे का मौसम जो है फोरकास्ट में कैसा नजर आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताइए, जो लोग भी कतर में बहुत वक्त से रह रहे हैं, कि आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छा वाला प्लीजेंट वाला मौसम है और ज्यादा प्लीजेंट वाला मौसम है वो कब तक आ जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, आकर जो है जिसका हैप्पी वाला बर्थडे है उसे विश करेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: नीरज श्रीधर की आवाज में एक अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, जब भी हम अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बैठकर सोचते हैं तो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी बॉलीवुड कैरेक्टर से रिलेट करने का मन कर ही जाता है। एंड ज़्यादातर लोग जो है वो रणबीर कपूर के किसी कैरेक्टर से जो है रिलेट कर लेते हैं। कभी हम खुद को जो है रॉक स्टार वाले जॉर्डन की जगह महसूस करते हैं, कभी तमाशा वाले वेद की जगह। एंड जब कुछ नहीं समझ आता है तो फिर हम अपने आप बर्फी बन जाते हैं, खाने वाली बर्फी नहीं, बर्फी मूवी वाले बर्फी। अब देखिए, रणबीर कपूर ने हमें अलग अलग लाइफ के मोड पे अलग अलग कैरेक्टर से रिलेट करने का जो है एक मौका दे दिया है, और आज उसी रणबीर कपूर का हैप्पी वाला बर्थडे है। सो बस हमारे फेवरेट आरके को जो है विश करते हुए आज सारा दिन आप उनके बहुत अमेजिंग वाले जो गाने हैं वो सुनने वाले। एंड हमारे शो में आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए पहला गाना जो है हम उनका वही प्ले कर रहे हैं जिससे उनकी शुरुआत हुई थी। हाँ जी, सांवरिया मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था रणबीर कपूर ने। सो उनके सबसे मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है रणबीर कपूर का, उससे शुरुआत कर रहे हैं। यू शबनमी से हम शुरुआत करते हैं। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर रणबीर कपूर को जो है विश करते हैं। एंड अगर आपके भी किसी लव्ड वन का बर्थडे है सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उन्हें ऑन एयर विश करते हैं। जरा मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। फिलहाल रणबीर कपूर के अमेजिंग वाले गाने इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: सांवरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
3: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: सत्य प्रेम की कथा मूवी से ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। जी मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हर बड़ी स्टोरी की जो है शुरुआत एक रिजेक्शन से होती है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ आप वो इंसान हो जिसे रिजेक्शन मिल रहा है एंड आप जो है अब अपने लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो बहुत गलत बात है ये। हाँ जी, एक लेजेंड को जो है पहले सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है, क्योंकि शुरुआती जो दौर था बॉलीवुड का उस वक्त जो है हैवी बेसी वॉइस जो है वो होती थी। लेकिन उसके बाद उस हस्ती ने जो है अपनी जगह बनाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और देखिए अब वो हमारी जो है दिलों की क्वीन जो है वो बनी हुई है एंड जनरेशन्स जो है वो उनके गानों से जो है मतलब एक लेगेसी जो है वो पास ऑन हो रही है जनरेशन्स टू जनरेशन। मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर जी की। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके अमेजिंग गानों को जो है याद कर रहे हैं। एंड अगर मैं लता मंगेशकर जी की बात करूँ ना, सो इनका जन्म जो है वो इंडिया में मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था एंड ये एक म्यूजिकल फैमिली से जो है बिलोंग करती हैं। एंड इनके जो पिता हैं यानी जो इनके फादर थे वो भी एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल जो है सिंगर थे एंड बहुत ही जो है ना शुरुआती टाइम से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बॉलीवुड में शुरुआती वक्त में जो है इन्हें उतना अच्छा ब्रेक नहीं मिला था, लेकिन एक गाना जो था आएगा आने वाला, उस जो है गाने से इन्हें बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। इन्होंने हज़ारों गाने जो है हज़ारों से बल्कि मैं कहूँगी थोड़े ज़्यादा ही गाने जो है वो हिंदी फिल्मों में गाए हैं एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत का जो है इन्हें मिला है 2001 में। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम जो है वो लता दीदी ने किया है। एंड बस मैं तो यही कहूँगी कि यार सलाम है ऐसी आवाज़ को एंड ऐसे टैलेंट को। सो वॉल्यूम बढ़ाकर लता मंगेशकर जी के गाने जो है वो हम एंजॉय करेंगे साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती हैं, हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

यार सब मिलके दुआ करो कि मूवी देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि यार देखो मूवी देखने से बढ़िया जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डेट आइडिया है या कोई यू नो गोइंग आउट आइडिया है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाता है एंड एक अच्छी मूवी देखने को मिल जाती है, और अगर मूवी अच्छी नहीं हो तो कंपनी तो आप एंजॉय कर लेते हो। वैसे एक अब आपको मौका जो है मैं देने वाली हूँ, जहाँ पर मूवी तो अच्छी है ही, बहुत बढ़िया सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है पिछले दो पिछले दो पार्ट से, एंड थर्ड वाला पार्ट तो ऑब्वियसली फाइनल पार्ट है तो अमेजिंग होने ही वाला है। मैं बात कर रही हूँ दृश्यम कंक्लूजन की, एंड आपको कपल टिकट जो है जीतने का मौका मिलने वाला है, बस आपको मेरे एक आसान से सवाल का जवाब देना है। सो जैसे विजय सनगांवकर जो है वो बने हुए हैं अजय देवगन, सो अजय देवगन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। अपना फोन जो है वो एकदम तैयार हो जाओ लेकर जो है 3311063 इज द नंबर, इस पर आपको आंसर देना है। और सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, मुझे बस इतना बता दो कि अजय देवगन की लास्ट अभी मूवी जो है कौन सी रिलीज हुई है दृश्यम कंक्लूजन से पहले। तो अभी रीसेंट अपीयरेंस जो है अजय देवगन की कौन सी मूवी में हमें अभी देखने को मिली है, रिसेंटली बहुत बात हुई है उस कॉमेडी मूवी की। सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे भी वॉल्यूम बढ़ाकर जो है इंजॉय करते जाओ। यार मैं कितनी एक्साइटेड हो गई यार मूवी के लिए, मैं फंबल कर रही हूँ। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठा के मैसेज कर दो। मैं हूँ आपकी कशिश जियो पिंदास।

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukhwakif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10, दैट इज 11:10. स्टे ट्यून्ड जियो विंदास.
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर. गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट. स्प्लिट योर पेमेंट इंटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 days, अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन. चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: देखिए यार कितने अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो शाहरुख खान साहब ने हमें दिए, लेकिन एक और जो है ऐसा स्टार है बॉलीवुड में जिन्हें थोड़ा सा जो है अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है। वैसे तो अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उन्हें जो है ऐसे कहा जाता है कि यार ठीक है ही इज नाइस, बट दृश्यम आने के बाद से उस स्टार को जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्यू रिस्पेक्ट थी जो बॉलीवुड में वो उनको मिलनी चाहिए थी वो मिलने लग गई है। बात करी मैं अजय देवगन साहब की, एंड आप लोगों से जो है एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मैंने किया था कि अजय देवगन की रीसेंट मूवी का नाम मुझे आप बताइए और उसके बदले में मैं आपको दृश्यम कंक्लूजन के जो है कपल टिकट्स देने वाली हूँ। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन आज के जो हमारे विनर हैं वो कुछ ज़्यादा ही खास हैं। सो मैं इन्हें विरुष्का कहना चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इनका नाम विरुष्का नहीं है। विरुषिका आज की हमारी विनर है, एंड हमारी दूसरी जो विनर है उनका नाम जो है वो है रिदिमा। सो रिदिमा कंग्रेचुलेशंस, एंड विरुषिका प्लीज़ मुझे ऑडियो नोट भेज के आपका नाम एक बार बोलना सिखा दो, एंड कंग्रेचुलेशंस। बाकी एक बार कन्फर्मेशन कॉल हमारी टीम की तरफ से आपको आ जाएगा। बाकी सब लोग निराश ना हो, क्योंकि आप लोगों को और मौके हम देने वाले हैं ये मूवी टिकट्स जीतने के। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो चिओ बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: तावरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो जब से तेरे नैना, या एनिमल का वो खतरनाक अवतार।
1: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
0: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas released by Zee Studios.

0: भाई आपने कभी चट मंगनी पट बिया सुना है? अगर सुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अमिताभ बच्चन जी के लिए लिखा गया मुहावरा है।
1: आपकी कशिश।
0: हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो दादाजी हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति जो टीवी पे आता है ना, उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। सो हमारी पूरी फैमिली बैठ कर KBC देखती है, अमिताभ बच्चन जी की जो है हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन जब किसी ने जो है अमिताभ बच्चन जी से जया जी के बारे में यानी उनकी वाइफ के बारे में सवाल किया, तो अमिताभ बच्चन जी ने जो है ये खुलासा किया, ये बताया कि उन्होंने जो है जया जी के पेरेंट्स से बहुत पहले से बात नहीं की थी। उन्होंने शादी के लिए जया जी से पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, उन्होंने हाँ कहा और नेक्स्ट डे दोनों की शादी हो गई। इसी को कहते हैं गाइस चट मंगनी पट ब्याह, मतलब जस्ट प्रपोज किया आपने और अगले दिन जो है शादी भी कर ली। गाइस जिन लोगों को कमिटमेंट इश्यूज हैं, प्लीज अमिताभ जी से एक बार सीख लीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, आकर आपको जो है फैशन के बारे में कुछ मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
2: सावरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
3: जब से तेरे नैना,
2: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार,
4: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं,
2: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आने दो, आने दो, बहुत जगह है, आने दो, आने दो, केक्स, आने दो, आने दो, संडेज, आने दो, आने दो, बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, ब्लिजर्ड्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
4: नीना गुप्ता,
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुन

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट

0: देखो बीइंग अ फैशन गर्ली, जब भी मुझे किसी इवेंट में जाने का मौका मिलता है ना, जहाँ पर फैशन की बात होने वाली होती है, ड्रेसेस की बात होती है, ज्वेलरी की बात होती है, एक्सेसरीज की बात होती है, तो पता नहीं क्यों मुझे रात में नींद ही नहीं आती है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है ऑन 106.3 रेडियो लव। अब देखिए यार, आज जो है दोहा में होने वाला है दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन, मतलब आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, एंड मैं जो है वहाँ पर जाने वाली हूँ। सो थोड़ी सी देर में मैं जो है वहाँ के लिए निकलने वाली हूँ, एंड आज इनॉग्रेशन शायद सबके लिए ओपन नहीं है, बट कल से जो है ये ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, एंड बहुत अमेजिंग ज्वेलरी कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, वॉचेस देखने को मिलेंगी, एंड जितने भी ज्वेलरी एंड वॉच के फैंस हैं उन सब के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जगह होने वाली है ये। सो मैं जो है वहाँ की क्लिप्स जो है शेयर करती रहूँगी, तो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लें, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए। आरजे कशिश के नाम से मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी, वहाँ पर आपसे हर डिटेल जो है वो शेयर करती रहूँगी। सो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो विंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
3: The last ride.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

0: देखिए अब तो ये बात फाइनल हो गई है कि हमें हमारे फोन का एडिक्शन हो चुका है। इंस्टाग्राम डिलीट करने से, डीएक्टिवेट करने से या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाने से इंस्टाग्राम पे हमें कोई नहीं रोक सकता कंटेंट कंज्यूम करने से और डूम स्क्रॉलिंग करने से। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑल ओवर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब यार क्या हुआ है ना कि कल से मेरा स्टोरेज इशू की वजह से शायद इंस्टाग्राम चल नहीं रहा है एंड किसी को मेरी आईडी भी नहीं दिख रही है अच्छे से, किसी को दिख रही है किसी को नहीं दिख रही है। सो मैं जो है इंस्टाग्राम नहीं चला पा रही हूँ, मैं चलाना चाह रही हूँ बट मैं नहीं चला पा रही हूँ। तो मैं जो है यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे लगा कि यार चलो इंस्टाग्राम नहीं चला रही हूँ तो मैं जो है थोड़ा अच्छा कंटेंट देखूंगी या मैं डूम स्क्रोलिंग नहीं करूंगी। लेकिन मैंने आज अपना स्क्रीन टाइम जो है वो देखा, यूट्यूब पे मैं ज़्यादा स्क्रोल कर रही हूँ, पूरे वीडियोस देख ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन जो है वो अब हो गया है 10 सेकेंड का। मुझे 15 मिनट की वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा अटेंशन चला जा रहा है। मुझे जो है शॉर्ट्स देखने में मज़ा आ रहा है और वो भी अगर 20 सेकंड का शॉर्ट है, मैं 3 सेकंड में स्क्रॉल कर दे रही हूँ। ये क्या है यार, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए, वरना कल जो है किसी एक्सपर्ट के साथ मैं ज़रूर से आ जाऊँगी। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। इसका एडिक्शन होना कोई गलत बात नहीं है यार, यहाँ पे डूम स्क्रोलिंग को आप साइड हटा सकते हो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तो देखिए अब मेरे यहाँ से जाने का आपको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं जा रही हूँ दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन में, तो वहाँ की हर अपडेट के लिए जो है आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर लो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर हम आपको सारी अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। और बाकी देखिए जाते जाते मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैं हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना और आपकी कशिश को याद करते रहना। हाँ जी, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे लाइफ मस्त है शो, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे थे हम। तो स्टे ट्यून्ड टू 106.3 रेडियो ऑलिव और अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
3: लुलू, where the world comes to shop.

0: एक कैसी दोनों खाओ
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
5: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सावरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे नैना
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
3: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. और रिचार्ज करने के लिए आ चुकी हूँ. बाय द वे, आफ्टर लंच मुझे खुद इतना आलस आता था, पर जब से आपसे बातें करने के लिए मैंने यहाँ पर रेडियो पर आना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये इतना बुरा भी टाइम नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटिफुल स्टोरी. आपको पता है कभी कभी जिंदगी हमें बहुत धीरे से रिमाइंड करवाती है कि लेट होना और ख़त्म होना दोनों अलग चीज़ें हैं. कुछ दिन पहले की बात है, 36 ईयर ओल्ड सुचिका की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी एशियन गेम्स में. एमएमए में सिल्वर मेडल जीता उन्होंने और हिस्ट्री बनाई. वो इंडिया की पहली एमएमए एशियन गेम्स मेडलिस्ट बनी. लेकिन मेडल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है. एक टाइम ऐसा था जब सुचिका ने कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स छोड़ दिए थे. उन्होंने सोचा था कि शायद उनका स्पोर्टिंग करियर ना ये ख़त्म हो चुका है. फिर ज़िंदगी ने उन्हें वापस उसी जगह पर पहुँचाया जहाँ से उन्होंने कभी खुद को हटाया था. और 36 की एज में उन्होंने वो कर दिखाया जो इंडिया में किसी लेडी ने, एमएमए एथलीट ने एशियन गेम्स लेवल पर पहले कभी नहीं किया था. और मुझे इस स्टोरी में मेडल से ज़्यादा ना चीज़ क्या अच्छी लगती है कि हम अपनी ज़िंदगी के डेडलाइंस खुद क्यों बनाते हैं. 25 तक ये कर लेना, 30 तक अचीव करना, 35 के बाद करियर नहीं है, 40 के बाद कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें ना हम खुद डिसाइड करते हैं. लेकिन ज़िंदगी कोई एग्जाम टाइम टेबल तो है नहीं. किसी का चैप्टर 22 पर खुलता है तो किसी का 36 पर. सो आई विल से कि मेरी तरफ से आज की एक लाइन याद रखिएगा कि आप लेट हो सकते हो लेकिन अगर कहानी अभी बाकी है तो आप लेट नहीं है. और शायद कभी कभी कमबैक का मतलब वापस नहीं होता जो आप पहले कर रहे थे. कमबैक का मतलब होता है अपने पुराने ड्रीम्स को एक नए वर्जन में जीना. सो विद दिस स्टोरी आई एम श्योर आपका दिन जो है ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, इवन आफ्टर लंच, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है, हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं. आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर. आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ.

0: आज की जो किताब है ना, ये थोड़ी सी अलग है। अगर ट्रैवल बुक्स आपको सिर्फ प्लेसेस के बारे में बताती हैं, तो अ माउंटेन, अ लेक, अ सॉन्ग आपको शायद अपने बारे में थोड़ा सा बताने लगे। यस, द बुक नेम इज अ माउंटेन, अ लेक, अ सॉन्ग। सो मानव कौल की और वैभव शर्मा की ये नई ट्रैवल व्लॉग जो है, ये इसी साल अगस्त में आई थी। किताब जो है वो सिटीज, लोग, म्यूजिक, लैंडस्केप और मेमोरीज के थ्रू ट्रैवल की आउटर जर्नी और इनर जर्नी के साथ साथ दोनों को बैलेंस करती है। सो मुझे ना इसका थॉट इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम किसी जगह पर जाते हैं लेकिन वापस सिर्फ उस जगह की मेमोरी लेकर आते हैं। कभी कोई शहर जो हमें पुरानी लोनलीनेस दिखाता है, कभी कोई पहाड़ जो हमें हरी पर सवाल कर देता है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है, और कभी कोई गाना जो अचानक किसी पुराने वर्जन और आर सेल्फ से मिला देता है। सो यानी ट्रैवल ना शायद सिर्फ जियोग्राफी तो नहीं है, ट्रैवल इज ऑल्सो साइकोलॉजी। मुझे लगता है कि अच्छे ट्रैवल वो नहीं होते जिसमें आप 10 सिटीज टिक कर देते हो एक ही बार में, मतलब 15 दिन में आपने 10 जगह घूम ली। अच्छा ट्रैवल है जिसमें लौट कर आपको लगे कि मैं वही जगह देखने गया था लेकिन वापस आकर खुद को थोड़ा अलग देख रहा हूँ। सो ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट यार। अगर आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है तो यू कैन रिलेट यार। आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको लगा कि आप थोड़ा सा चेंज हो गए हो, थोड़ा सा स्लो हो गए हो, थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान, नंबर इज सेम 3311063 और ये है ऑलिव रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: So, अगर ना मैं आपसे एक सवाल करूं कि कितने आदमी थे तो आपके दिमाग में ना किसकी आवाज आती? Obviously, अमजद खान की एज अ गब्बर सिंह, लेकिन बॉलीवुड हिस्ट्री में एक फैसिनेटिंग व्हाट इफ छुपा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज। बॉलीवुड हिस्ट्री का वो बताती हूं आपको व्हाट इफ क्या है। शोले में गब्बर सिंह का रोल जो है वो स्टार्टिंग में अमजद खान के पास नहीं गया था, वो गया था डैनी डैनजोंगपा के पास, जो कि लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वो फिरोज खान की धर्मात्मा के लिए कमिटेड थे। बाद में अमजद खान को उन्होंने कास्ट किया। और इंटरेस्टिंगली उस टाइम पर जो राइटर हैं सलीम जावेद, उनको उनकी वॉइस को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन अमजद खान ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि आज गब्बर को उनके अलग तरीके से इमेजिन कर ही नहीं सकते हम। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है हमारे लिए कि हम गब्बर को किसी और की आवाज़ में इमेजिन करें। और यही सिनेमा का मैजिक है, कभी कभी कास्टिंग का सेकेंड चॉइस ना हिस्ट्री का ओनली चॉइस बन जाता है। You are listening Radio Olive, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम yes, of course, Olive Recharge। तो हम ना जिंदगी में कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट चांस नहीं मिला, लेकिन शायद फर्स्ट चांस मिलना जरूरी भी नहीं था। कभी कभी हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके लिए हम इनिशियली बने हुए ही नहीं थे, और फिर वही अपॉर्चुनिटी हमारी पहचान बन जाती है। सो आज का बॉलीवुड क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको किसी आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर को रिकास्ट करने का चांस मिले तो आप किस कैरेक्टर को किस एक्टर के साथ देखना चाहोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज 3111063। Stay tuned, Jio, Bindas।
1: सावरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो,
2: जब से तेरे नैना,
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार,
3: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं।
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: देर लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

सो यस्टरडे वॉज इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज और स्कोर कार्ड ना कभी कभी पूरी कहानी नहीं बताता। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 295 रन बनाए 7 विकेट पे। अब टारगेट था 296 का ऑफकोर्स। अब यहाँ पर इंडिया ने टारगेट को सिर्फ चेज नहीं किया, ऑलमोस्ट रीराइट कर दिया। इंडिया जो है वो 300 के पार पहुंच रही थी सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे और 41 ओवर 4 बॉल्स में। और आई वॉज लाइक कि यार कितने अच्छे से जीते हो भाई। सो ODI तो था ये और इस चेज की दो बड़ी स्टोरीज थी। शुभमन गिल का जो स्कोर था वो 110 था और विराट कोहली का अनबीटेबल 139 ऑफ 88 बॉल्स। कोहली की सेंचुरी उनकी 55th ODI की 100th थी और इस इनिंग के टाइम पर उन्होंने अपने 50,000 ODI रन्स को भी माइलस्टोन जो था वो भी पार कर लिया। सचिन तेंदुलकर के बाद ये मार्क हासिल करने वाले वो दूसरे बैटर हैं। सो और दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की बात करूँ तो कुलदीप यादव ने 4 for 40 लेकर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत लिया। लेकिन मुझे इस मैच की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या लगी? इंडिया ने पैनिक नहीं किया, टारगेट बड़ा था, लेकिन चेज में अर्जेंसी और कंट्रोल दोनों बहुत साथ थे। क्रिकेट में भी शायद यही होता है जिंदगी की तरह कि हर बड़ा टारगेट देखकर आपको बॉल पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। कुछ बॉल्स छोड़नी पड़ती हैं, कुछ सिंगल्स लेने पड़ते हैं, कुछ बॉल्स आती हैं पर सही नहीं होती, तभी बाउंड्री आपके पास होती है और आपको देखना पड़ता है कि बाउंड्री पास जाना है कि नहीं जाना। सो कंसिस्टेंसी अक्सर ब्रिलियंस से ज़्यादा पावरफुल होती है और कल इंडिया की बैटिंग में वही काम कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। सो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मैच। आप मुझे बताओ कि कल के मैच में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? एवरीबडी विल से कि यार वो 15,000 रन जो थे विराट कोहली के ODI के वो कंप्लीट हो गए, पर उसके अलावा क्या आपको अच्छा लगा उस पूरे मैच में? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास। ऑलिव
1: रिचार्ज। आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
0: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

किताबों की बात हो ही रही थी तो आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस और उसमें अगली किताब का नाम था एट द स्पीड ऑफ फ्लावर्स। इस किताब का नाम सुन के ऐसा लगता है ना, कितना खूबसूरत नाम है, एट द स्पीड ऑफ फ्लावर बाय दीपक रमोला। और टाइटल इटसेल्फ एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछता है कि हम जिंदगी इतनी जल्दी क्यों जी रहे हैं। पैंगुइन के सितंबर 2026 रिलीज में इस किताब का बेसिक इनविटेशन बहुत सिंपल था, स्लो डाउन एंड नोटिस। हर चीज़ को इमिडिएटली अचीव करना ज़रूरी नहीं है, हर सीजन का अपना पेस होता है। फूलों को अगर आप खींच कर जल्दी खिलाना चाहो तो ऐसा तो होगा नहीं कि शायद वो जल्दी ही खिल जाएं, तो शायद वो खिल ही नहीं पाएंगे। और इंसानों के साथ भी ना ऐसा ही है कि हम ना अपने करियर की स्पीड कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप की स्पीड कंपेयर करते हैं, सक्सेस की स्पीड कंपेयर करते हैं और जिंदगी देखकर सोचते हैं दूसरों की कि मैं पीछे क्यों हूं। लेकिन पीछे कौन है, लाइफ का कोई रेस तो है नहीं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये आपको पार करना है जिसमें सबके लिए फिनिश लाइन एक ही दिन हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि बड़े होना, अडल्टहुड में आना, विजडम ये है कि चीजें फोर्स करने से नहीं बल्कि टाइम देने से ठीक होती हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ऑफ रिचार्ज। और दिन के टाइम पर किताबों की बातें करना, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप थोड़े से फ्री हो, लंच कर चुके हो और थोड़ा सा आलस आ रहा होता है, तब कुछ अच्छी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मोटिवेशन वाली। सो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि शायद उसे अपना टाइम चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो? टेल मी। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Z Studios.
4: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
5: अरमान मलिक।
6: I'm number one.
4: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: Radio Olive, I'm number one.
9: Olive laga aur ho ja recharge.
10: Olive recharge.
11: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
12: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
13: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: अच्छा कॉमेडी का मतलब क्या है? बस हंसना? बिल्कुल नहीं। वीरदास के फूल वॉल्यूम को इस साल इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। ये उनका तीसरा इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन है और इससे पहले वो लैंडिंग के लिए एमी भी जीत चुके हैं। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? कॉमेडी एक्चुअल करती क्या है? एक कॉमेडियन आपको पहले हंसाता है, फिर उसी जोक के अंदर कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ डाल देता है और आप हंसते हंसते अचानक सोचते हो कि यार वेट, ये बात तो सही थी। शायद कॉमेडी की ताकत यही है कि लेक्चर में कोई आपको 20 मिनट नहीं समझाएगा, आप भूल जाओगे यार। मतलब कोई अगर 20 मिनट बोलेगा तो या तो आपको नींद आएगी या आप भूल जाओगे, लेकिन कोई कॉमेडियन वही बात एक परफेक्ट जोक में कह दे तो आपको सालों याद रह जाती है। सो मेरे लिए इंटेलिजेंट कॉमेडी वो है जो जोक खत्म होने के बाद भी दिमाग में थोड़ी देर के लिए चलती रहती है, क्योंकि लाफ्टर ना सिर्फ एंटरटेनमेंट तो है नहीं, कभी कभी पर्सपेक्टिव बदलने में सबसे आसान रास्ता अगर कोई है तो कॉमेडी ही है। सो आपकी फेवरेट कॉमेडी वो है जिसमें आप सिर्फ हंसते हैं या फिर जिसमें हंसने के बाद सोचते भी हैं कि यार ये बात तो सही थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, 3311063 इज माय नंबर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेस, आने दो बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेस 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट। ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: से कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो पुरानी तो हो जाती हैं लेकिन आउटडेटेड नहीं होती। लगान को 25 साल हो गए हैं और आज भी जब वो क्रिकेट मैच शुरू होता है हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि सस्पेंस सिर्फ रिजल्ट में नहीं होता, जर्नी में भी था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ओवर रिचार्ज। सो अखिलेंद्रा मिश्रा जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, उन्होंने लगान की एक पूरी प्रिंसिपल शूट एक कंटिन्यूस 6 महीने स्केड्यूल में हुई थी और एक्सट्रीम हीट और कोल्ड दोनों में। सो कास्ट जो रोज़ सुबह 6 बजे शूट के लिए निकलती थी उसके बारे में बात की और एक बहुत ही अच्छा ट्रिविया बताया कि जो क्रिकेट सीन था उसके क्लाइमेक्स में प्रॉपर बैटिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, इसीलिए उनके कई शॉट्स जो थे वो क्लोजअप में किए गए थे। लेकिन स्क्रीन पर हमें ये सब दिखाई नहीं दिया, हमें सिर्फ कहानी दिखाई देती है और यही सिनेमा की क्राफ्टमैनशिप है। मतलब आपको मेहनत महसूस नहीं होती, सिर्फ मैजिक महसूस होता है। आपको लगता है कि यार कितने बड़े स्टार्स हैं लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत है। शायद लगान आज भी इसीलिए काम करती है क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट की फिल्म नहीं थी, वो टीम वर्क की फिल्म थी। डिफरेंट लोग एक कॉमन गोल के साथ आते हैं और शायद इसी वजह से जनरेशन जो है उसमें अपनी कोई नई कहानी ढूंढ लेती है। आपके लिए बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसे आप 10 साल बाद भी दोबारा देख सकते हो? ऐसी कोई 10 साल पुरानी फिल्म जिसका नाम आपको आज भी याद हो? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर सेम 3311063। सुन रहे हैं आप ऑलिव रिचार्ज, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे नैना,
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार,
3: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं,
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर। शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
3: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट।
4: लुलु, where the world comes to show. Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge. Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
6: Olive recharge.
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance lekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हो कि यार इस रोल में इस एक्टर के अलावा कोई और कैसे हो सकता था। सो अभी जो नई मूवीज आती हैं उनमें तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि यार कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इसकी जगह उसको लेना चाहिए था। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर आइकॉनिक कास्टिंग शुरू से आइकॉनिक तो थी नहीं। शोले में ही देख लीजिए, गब्बर के लिए पहले किसी और को कंसिडर किया गया था, ठाकुर का रोल दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, और अमजद खान जो बाद में गब्बर की आइडेंटिटी बन गए, शुरुआत में ऑब्वियसली सुपरस्टार चॉइस थे भी नहीं। और इस फिल्म की कास्टिंग आज हमें परफेक्ट लगती है, उसके पीछे कई सारे व्हाट इफ्स थे। और सिनेमा में ना कास्टिंग सिर्फ फेस चुनने तक का सफ़र नहीं है, एक एक्टर की बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, साइलेंस, टाइमिंग सब मिलकर कैरेक्टर बनाते हैं। अगर गब्बर की आवाज़ अलग होती, अगर ठाकुर कोई और एक्टर होते, और अगर शोले वही फिल्म होती, शायद स्टोरी वही होती, लेकिन मेमोरी बदल जाती। और मुझे लगता है कि यही आर्ट की सबसे ब्यूटिफुल चीज़ है। एक सही एक्टर एक सिर्फ कैरेक्टर प्ले नहीं करता, वो कैरेक्टर को हमारे कलेक्टिव मेमोरी में परमानेंटली इंस्टॉल देता है। सो फन बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आपको किसी आइकॉनिक हिंदी फिल्म की पूरी कास्टिंग बदलनी हो तो कौन सी फिल्म और कौन से एक्टर्स आप चुनने वाले हो। बाय द वे, न्यू मूवीज में तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको लगेगा कि यार इसमें ये नहीं होना चाहिए था, इसमें तो वो हीरोइन होनी चाहिए थी। सो यू टेल मी योर यू नो फिल्म जिसमें आप सारे स्टार्स को बदलना चाहते हैं। 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है ऑलिव रिचार्ज।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है, हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: सुनो आज, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट।
4: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
5: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: बस एक उम्मीद रहती थी कि शायद आज कुछ लेकर आएंगे, लेकिन बड़े होते होते हमारी जिंदगी में हर खुशी के साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है। आज बहुत काम है, कल खा लेंगे, अभी डाइट चल रही है, कोई ओकेजन होगा तब खा लेंगे, और शायद इसी चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियों को ना पोस्टपोन करते चले जाते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि हर खुशी के लिए कोई बड़ा ओकेजन जरूरी है ही नहीं, कभी कभी बस एक गर्म दोपहर, कुछ अच्छे लोग और एक बोल ऑफ आइसक्रीम इतना ही काफी है। और इसी बहाने स्वीट लिटिल अपडेट भी है आपके लिए। डेयरी क्वीन में स्पेशल ऑफर चल रहा है 30th सितंबर तक, टुडे इज ऑलरेडी 28th, सो आई विल से कि आइसक्रीम केक ना सिर्फ 60 रियाल में मिल रहा है, डिजर्ट सिर्फ 10 रियाल में, संडे सिर्फ 5 रियाल और स्विल सिर्फ 9 रियाल में। तो अगर आज कोई पूछे कि कुछ सेलिब्रेट करने जैसा है तो रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कह दीजिए हाँ आज का दिन ही काफी है। और वैसे भी कुछ खुशियों का हिसाब नहीं रखा जाता, उन्हें बस इंजॉय किया जाता है, शेयर किया जाता है और याद रखा जाता है। सो डेयरी क्वीन, क्योंकि अभी कभी कभी एक छोटी सी स्वीटनेस भी पूरे दिन का मूड चेंज कर सकती है। सो अपने नियरेस्ट डेयरी क्वीन पे जाइए, चेकआउट कीजिए कि आपका फेवरेट यू नो आइसक्रीम कौन सा है और अपनी फैमिली के साथ उसे एंजॉय कीजिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Awesome.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट।
3: लुलु, where the world comes to shop.
4: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। टीएनसी अप्लाई।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
6: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
6: ऑलिव रिचार्ज।
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: अगर आप किताबें पढ़ते पढ़ते ना खुद डिटेक्टिव बन जाते हो, तो रिचर्ड ओस्मान वापस आ गए हैं उनकी एक नई किताब के साथ जिसका नाम है वी चेज शैडोज। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ रिचार्ज। ये उनकी वी सॉल्व यू नो जो पहले वाली किताब है मिस्ट्री वाली, जिसमें एमी और रोजी और स्टीव जो है नए केस के पीछे भागते हैं। सो बेसिकली वैसी एक मिस्टीरियस नोट और उतने सारे सस्पेक्ट्स के रीडर को भी हर चैप्टर में अपनी थ्योरी बदलनी पड़ी। सो ये जो किताब है इसी साल रिलीज हुई है, लेकिन मिस्ट्री बुक का सबसे मजेदार हिस्सा जो है वो पता है क्या होता है? गेस करना। राइटर आपको इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन पूरी नहीं, आप क्लूज कलेक्ट करते हो, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हो और फिर अपने दिमाग में एक थ्योरी बनाते हो और फिर एक नया क्लू आता है और आपकी पूरी थ्योरी जो है वो कलेस्प हो जाती है। आपको लगता है यार ये क्या हुआ। सो शायद यही रीजन है कि मिस्टीरियस जो किताबें हैं वो इतना अट्रैक्ट करती हैं मुझे स्पेशली। सो रियल लाइफ में हम अक्सर ना आंसर्स चाहते हैं, लेकिन फिक्शंस में मुझे अनसर्टेनिटी इंजॉय करने मजा आता है। हम चाहते हैं कि ऑथर हमें थोड़ा कंफ्यूज करे, थोड़ा मिसलीड करे और आखिर में बोले कि देखा क्लू तो सामने ही था। और अगर आप डिटेक्टिव होते तो आप क्लू पर भरोसा करते या अपने इंस्टिंक्ट पर? बाय द वे अगर आप किताबें पढ़ते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना आता होगा कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे नैना,
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
3: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो 106.3
0: जे ओ बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि यार मेरे जाने का टाइम हो गया है, बट जाते जाते आपसे फिर भी एक सवाल जरूर पूछूंगी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। यार मतलब दोपहर से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। आपके भी घर जाने का टाइम हो गया, ऑफिस खत्म हो गया, अब आपके पास अपना खुद के लिए टाइम है। सो हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, पर मुझे तो हर शाम बड़ी खुशी लगती है कि भाई आज का काम खत्म हुआ और प्रोडक्टिव दिन निकल गया। प्रमोशन, हॉलीडे, बर्थडे, बिग अचीवमेंट्स, इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन अच्छा बनाने वाली चीजें जो है वो छोटी छोटी ही होती हैं। अचानक किसी का कॉल आ जाए, कोई गाना आपका फेवरेट प्ले हो जाए रेडियो पर, बिना अलार्म के अच्छी नींद आ जाना, किसी स्ट्रेंजर का रास्ता उसे बता देना, घर पहुंचकर गर्म खाना खाना, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। सब हैप्पीनेस को ना इतने बड़ा ही कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देते हैं, जबकि हैप्पीनेस ना सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, वो छोटे छोटे चीजें, ऑर्डिनरी दिन, वो थोड़ा सा स्पेशल उसे बना देना, बस वही है। सो ऑर्डिनरी मोमेंट्स के कलेक्शन से ना ये जो दिन है खूबसूरत बनता है। सो अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल सेम टाइम सेम जगह पर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। खुश रहने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह मत ढूंढिए, कभी कभी छोटी वजह को ही अपना जो रीजन है वो बना लीजिए। फॉर नाउ बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून। ये है ऑलिव रिचार्ज, बाय, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
4: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
1: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग।
5: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आपका आज का दिन किसी ने परेशान तो नहीं किया? मेरे को बता दो, शिकायत लगा दो, डांट देंगे 1-333-1-1-0-6-3 पर आपके आज के दिन के बारे में और आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस जो है वो मुझे भेज दीजिए। इससे गोभी जैसी शक्ल मत बनाया करो, जब सिमरन कौर का शो चल जाए ना तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, नहीं है तो आपकी और भेज देती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
2: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and diamonds.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: आपको कहाँ मिलेंगे, देखो यार रेडियो ऑलिव भी मिलेंगे और सिमरन कौर के शो में भी मिलेंगे, थोड़ी अपना तारीफ भी करना बनता है ना यार। हैप्पी वाला बर्थडे, तो उनकी जो है बहुत सारी बधाइयां, मिठाइयां से बहुत सारे पटाखे हैं। लता जी की बर्थ एनिवर्सरी है, सो उसके भी हम बहुत जो आप लोगों के लिए जो है वो गाने प्ले कर रहे हैं। और मैंने आपसे शो की शुरुआत में पूछा था कि आज का दिन आपका कैसा रहा, किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया, तो एक शिकायत आई है।
1: हाय गुड इवनिंग सिमरन जी,
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: तो किया मुझे
0: किसने,
1: आप की इंतजारी ने परेशान किया, शुरू हो जाएगा बस 5 बजने की इंतजारी ने परेशान किया था।
0: स्वीट यार,
1: और बस बाकी ठीक है, मजे में है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: खुश रहो यार लाइफ में, मुझे भी खुश रहना यार। मैं बस मेरी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो नहीं चाहती हूँ, अगर कोई स्ट्रेस आता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ यार।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
0: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे नैना
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
3: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है, उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: हेलो नमस्कार, मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
2: ये बात है।
0: यार मेरे को कतर के रूल्स ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं। मतलब आपकी सेफ्टी के लिए हर तरीके का जो है वो ध्यान रखा जाता है। जैसे कि ऑनलाइन अगर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, चाहे उसकी अनऑथराइज्ड फोटोज और वीडियोस जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं विदाउट उसके कंसेंट के, तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और 100,000 कतरी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। अगर साइबर बुलिंग कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, यू नो ऑफेंसिव कॉन्टेंट जो है पोस्ट कर रहे हैं, किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, So, आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 100,000 रियाल का जो है वो जुर्माना देना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप किसी के लिए इस तरह की हरकतें ना करिएगा, ठीक है? तो ये तो भूल ही जाओ क्योंकि कतर में हो बेटा, मुस्कुराओ आप, वरना मुस्कुराहट आपकी छीन ली जाएगी अगर आप लॉ को तोड़ोगे। लॉ तो कहीं पे भी तोड़ना अच्छा नहीं है यार।

0: बैक टू बैक लोग झूठ बोलते हैं ना, उनके लिए भी लाइट डिटेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए भी सजा होनी चाहिए। सुन दे रो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
5: Now? We still have time for the festive season.
4: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.

गाना है यार। देखो यार क्या होता है कि जब मेरे को अच्छा लगता है तब मेरा पिज्जा खाने का मन करता है, जब मेरे को लाइफ में थोड़ा सा डाउनर होता है तब मेरा पिज्जा खाने का मन करता है। सो पिज्जा जो है वीकेंड आ जाए तो खाने का मन करता है, लेकिन वीकेंड के बगैर भी आप लोग पिज्जा खा सकते हो जब पापा जॉन्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाय वन गेट वन फ्री। एग्जैक्टली, सो अगर आप अकेले हैं तो स्मॉल साइज पिज्जा मंगाएंगे तो आपको एक और फ्री मिल जाएगा, तो आप किसी के साथ बांट सकते हैं। मीडियम खरीदेंगे तो भी उसके साथ आपको फ्री मिलेगा, अगर लार्ज खरीदेंगे तो भी आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। लार्ज वालों का फायदा जो है ना, जो फैमिली वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया वाला ऑप्शन है। सो 30 तारीख तक पापा जॉन्स ये ऑफर आपको दे रहे हैं कि भाई बाय वन गेट वन फ्री, अपनी मर्जी के पिज्जा लो, एक का ही प्राइस आप दोगे और आपको दो पिज्जा मिल जाएंगे।

0: पिज्जा मांगा है। सुनते रहो रेडियो ओलिवर के दरोजी अविनाश।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है, हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
5: नहीं बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
6: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
4: Overseas release by Z Studios.
8: Tough काम और भी आसान. Carmel Group लाया है Shantui के wheel loaders, excavators और bulldozers. मजबूती ऐसी जो हर challenge जीत ले. Visit Carmel Group now.
9: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
10: Hey, this is Ileana De Cruz.
11: This is me, Ritik Roshan.
12: Hi, I'm Alia Bhatt.
13: Hi, मैं हूँ Vivek Anand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
14: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
15: सिमरन के साथ
16: Zabardast evening. Make you drive golden with.
17: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
18: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

देखने का जीतने का मतलब टाइम आ चुका, मूवी देखने में अभी टाइम है, वो 3rd October को देखने वाले हैं, सैटरडे को दोपहर के 2 बजे। जी हाँ, आपके लिए जो है वो मतलब मजेदार माहौल जो है वो बनेगा। फिल्म मास्टर UAE जो है वो आप लोगों के लिए कराए हैं दृश्यम 3। सो इसके लिए मैं और थोड़ी ज्यादा

0: 15 से 30 सेकंड्स के बीच में बताओ कि आप ये मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हो। सो एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ, हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए आप ये कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हो, और भेज दो 3311063 पर, सिर्फ और सिर्फ वॉइस नोट पे है ये अपना कॉन्टेस्ट।
1: रब ने बनाया जी कर वे पिदार।
0: I know, right?

0: 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
4: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
5: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one time airport drop off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: Zabardast evening. Make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lucas. Joya Lucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: थैंक यू यार और क्या चाहिए टिकट चाहिए मैं कह सुनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन गौरे आपके साथ फिल्म मास्टर यूएई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दृश्यम 3 ये 3 अक्टूबर को हम सब देखने वाले अपना थिएटर बुक होगा हमारे लकी विनर्स के लिए जो कि हम मिलके दोपहर के 2 बजे ये 3 अक्टूबर को फिल्म देखेंगे। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ वही लोग पार्टिसिपेट करें जो कि दोपहर को 2 बजे फ्री रह सकते हैं 3 अक्टूबर को मूवी देखने के लिए। फिर ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे अरे आपने तो टाइम नहीं बताया हम तो बिजी हैं ये है दिस एंड दैट। तो या टाइम मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। सो अगर आपको ये दृश्यम 3 की मूवी टिकट जीतनी है तो आपको बस मुझे 15-30 सेकंड के बीच में ये बताना होगा कि आप ये मूवी टिकट फ्री में क्यों डिजर्व करते हो।
1: हे सिमरन हाउ आर यू
0: गुड यार
1: आई बीन मिसिंग यू फॉर सो लॉन्ग
0: अरे
1: एंड मैं इतने दिन से सोच रही थी आई थिंक यू वर ऑन लीव और समथिंग एंड वी कुडंट हियर योर वॉइस एंड द डेज वर रियली सैड विदाउट यू नॉट दैट मैं मस्का मार रही हूं बट इट वाज रियली सैड नॉट लिसनिंग टू यू फॉर क्वाइट सम टाइम इन दोहा। ओके कमिंग टू द कॉन्टेस्ट व्हाई शुड वी हैव द 2 kids for Drishyam 3 for me and my husband because life mein bahut tension hai yaar apne aap ko positive rakhne ki koshish kar rahe hain bahut sare stress hain bachchon se related problems hain but we are just figuring out things and hence we need to just loosen up a bit isliye hame tickets de do thank you so much jio binda
0: lo ji lo aap khush raho yaar badhaiyan bachaiyan de bahut sare patake aur abhi ek aur ticket mere paas bachi hui hai। आप मुझे रीजन बताइए 15-30 सेकंड के बीच में कि आप ये मूवी टिकट जो है वो क्यों डिजर्व करते हैं। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ एंड आने वाले गानों में से चलो फिर आ रही हूँ थोड़ी देर में।
2: सावरिया का वो टावर ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
3: जब से तेरे
2: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
4: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं।
2: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
4: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
0: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
5: लुलु, where the world comes to shop.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल। एंड हम खेल रहे हैं एक कॉन्टेस्ट जिसमें आप मूवी टिकट जीत रहे हो। जी हाँ, दृश्यम 3 जो है वो फिल्म हम हमारे लकी लिस्टनर्स के साथ देखने वाले हैं, फुल थिएटर हमारे लिस्टनर्स के साथ बुक करके। ओके, सो ये 3rd October को दोपहर को 2 बजे मूवी होने वाली है। मेक श्योर कि आप सैटरडे को दोपहर 2 बजे फ्री रहे मूवी देखने के लिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। आपके लिए फिल्म मास्टर UAE लेकर आए हैं दृश्यम 3। सो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे कोई रीजन दीजिए कि आपको ये यू नो कपल मूवी टिकट क्यों मिलनी चाहिए।
1: Hi, Sarah. I really miss you. How are you?
0: I'm good, thank you.
1: And I think regarding contest, I think I need it because I want to spend some time with my husband, to enjoy with him, and because we are really busy with the work and all with the kids, so to refresh our mind.
0: Thank you so much, Sara. Badaiyan, mithaiyan de bahut sare patake. सारा हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर हैं, और एक बार मेरा मौका लगा था उनके घर पे जाने का, और जिस तरीके से उन्होंने खातिरदारी की है, भाई साहब आप लोग ना बवाल हो, आप लोग कमाल हो यार। जब भी आप सबसे यू नो इन आप में से किसी से भी मिलने का मौका मिलता है, आप लोग कितने वेलकम ही होंगे यार, कितने प्यारे हो यार आप लोग। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

कमाल खान की आवाज, कमाल गाना, कमाल फिल्म यार. और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल धूम मचा ले धूम मचा ले, ये तो सुनिधि चौहान ने गाना गाया है. लेकिन ये फिल्म वाला गाना जो गाया था ना, वो पहले जो था वो टाटा यंग वाला जो गाना है, उसमें क्या हो रहा था कि प्रीतम दा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो टाटा यंग थी वो क्या होता है कि धूम की जगह धूम धूम वर्ड बोल रही थी. तो उन्होंने अपने पूरी सारी कोशिशें की, उन्होंने बोला दैट्स ओके, ठीक है धूम धूम ही जाने दो, है ना. सो पहले ये जिसमें बहुत सारी बाइक्स दिखाई गई हैं उसकी जगह कार्स का यूज होने वाला, स्पोर्ट्स कार्स का यूज होने वाला था. लेकिन उन्होंने बोला, डायरेक्टर ने बोला फिल्म के, नहीं यार हीरो का फेसेस जो है ना वो बाइक पे दिखने वाले, एंड वो उनका बचपन में एक बहुत बड़ा क्रेज था मोटरसाइकिल्स वगैरह को लेके, तो उन्होंने फिल्म में जो थी वो इसीलिए मोटरसाइकिल वगैरह जो थी वो यूज की. अब रिमी सेन की बात करें, रिमी सेन की जो थी ये थर्ड हिट थी इनरो, तो उन लोगों को ये लगने लगा कि भाई साहब हंगामा में, बागबान में, उसके बाद ये है ना. तो रिमी सेन जो है वो इतना ज्यादा फिल्म में काम भी नहीं करती, बस पार्ट बनती है और फिल्म हिट हो जाती है. लेकिन ये बात ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि उसके बाद क्योंकि फिल्म आई दीवाने हुए पागल आई और वो फ्लॉप हो गई. और भी बहुत सारी बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई आपको वापस लौट के बताऊंगी.

0: ऑलिव कोर के दरिए जियो बिंदास और लता जी की आज बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है, हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

0: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: प्यार इस गाने में। करें इस फिल्म को बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिक्स जो थे वो रिव्यू मिले थे नेगेटिव, लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस भी जो था वो बिजनेस किया था। यश चोपड़ा ने संजय दत्त को पहले जॉन अब्राहम के रोल की जगह जो था वो साइन किया था, लेकिन समहाउ कुछ कॉम्प्लिकेशन थी तो संजय दत्त ने इस रोल को करने से मना कर दिया। एंड अभिषेक बच्चन की जो ये हिट मूवी थी, एक उनकी सीरीज ऑफ फ्लॉप आई थी, बहुत सारी मूवीज यू नो फ्लॉप हुई थी, उसके बाद उनकी ये हिट वाली बढ़िया वाली मूवी जो चली बॉक्स ऑफिस पे अच्छी, ये फिल्म आई थी। और सेम ही अमिताभ बच्चन सर के साथ हुआ था कि जब 1973 में जंजीर फिल्म आई थी उससे पहले उनकी सीरीज ऑफ मूवीज जो थी ना वो मतलब फ्लॉप हुई थी, तो एक तरीके से अभिषेक बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड बात करें जॉन अब्राहम की, तो इस फिल्म में यू नो उन्होंने लंबे बाल रखे हुए थे, तो यंगर जनरेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हुई। इनफैक्ट अपने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी लंबे बाल जो थे वो उन्हीं से इंस्पायर होकर रखे थे। सो या ये फिल्म मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी ये फिल्म, लेकिन मैं आपको बता दूं, जज मी प्लीज, मैंने धूम फिल्म जो है वो नहीं देखी है।
1: तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है,
0: और ये फिल्म मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी हुई है।

0: रेडियो ऑलिव गुरगेदरी जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: रियलिटी चेक बड़ा कैड़ा है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: आज मैं आपको एक चीज सुनाऊंगी और फिर आपको रियलिटी चेक जो है वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते कि क्लैरिटी मिल जाए तो अटैचमेंट जो है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है, फिर ना शिकायत रहती है ना उम्मीद, बस सब कुछ समझ में आ जाता है और मन जो है ना वो खुद ही पीछे हट जाता है। फिर वही इंसान सामने हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग लेवल का सीन होता है कि वो इंसान जिससे आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी वो अगर सामने भी खड़ा रहे तो आपको फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि कभी कभी हम इंसान को नहीं उससे जुड़ी अपनी उम्मीदों को छोड़ते हैं और जिस दिन वो उम्मीदें मर जाती हैं तो वो इंसान दिल से उतर जाता है। तो नॉट अ बिग डील अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और आप किसी इंसान का बहुत ज़्यादा करते हो, इवेंचुअली सारी चीज़ें निकल जाती हैं टाइम के साथ। सो इट्स ओके, थोड़ी देर में ले जा रही हूँ आपके लिए नेम गेम। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
2: जब से तेरे
1: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
3: सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
1: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव
1: रिचार्ज फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

ट्रैक यार जी. सिमरन गौर आपके साथ और बिना देर लगाए अब हम खेलते हैं. देखो यार, अगर आप चाहते हो कि मैं अब आप लोगों का नाम लूं तो आप क्विकली मुझे अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए. व्हाट्सएप करेंगे 3311106 3. जी हाँ, 3311106 3. इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम जो है वो लिख के भेजना है. नो हाई नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम. चले मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ. रिद्धिमा, गौरव, वैशाली, एस बी, बख्शी जी, जो जी, मुकेश जी, राज जी, थैंक यू सो मच. बौद्ध जी, थैंक यू सो मच. मरिया जी, शिल्पा जी, थैंक यू सो मच. प्रिया जी, थैंक यू सो मच. मुअज्जम जी, थैंक यू सो मच. शिप्रा जी, थैंक यू सो मच. रेहान जी, थैंक यू सो मच. सूर्या जी, थैंक यू सो मच. वरिष्का जी, थैंक यू सो मच. रुस्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. अजीज़ खान जी, थैंक यू सो मच. सुरेश जी, थैंक यू सो मच. मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सादलदीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. क्विकली नाम लिख के भेजिए, फिर मत कीजिए मेरा नाम मन नहीं लिया आपने. उसामा जी, थैंक यू सो मच. संदीप जी, थैंक यू सो मच. अफजैश जी, थैंक यू सो मच. हमजा जी, थैंक यू सो मच. अब्रार जी, बहुत बहुत शुक्रिया. जन्नत जी, थैंक यू सो मच. वृशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. क्विकली नाम लिखो दोस्तों. फ्लाई जोन टीम 15, नाम तो लिखो दोस्त. यार क्या कर रहे हो यार अपना. हमजा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अकबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. अदील जी, थैंक यू सो मच. ऋषिक जी, थैंक यू सो मच. जैम जी, थैंक यू सो मच. आयनेश जी, थैंक यू सो मच. हसन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अगला गाना बस शुरू होने वाला है दोस्तों, फिर मत कहना. हेबा नाजी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज. हिबा नाजी, आई होप मैं आपका नाम जो है वो अभी भी सही ले रही हूँ. अबू जी, थैंक यू सो मच. सईद जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ओएशा जी, थैंक यू सो मच. जन्नत जी, थैंक यू सो मच. सुल्तान जी, थैंक यू सो मच. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. और जिन जिन लोगों को मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिख सकते हो. और अपना फेवरेट वाला इमोजी मुझे बताना मत भूलना. और अगले घंटे तैयार हो जाओ, एक चुटकी सॉन्ग खेलेंगे यार.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October 11 AM to 8 PM, मैरियट मार्की सिटी सेंटर दोहा। कम एंड डिस्कवर फेस्टिव फैशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिट।
2: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।

0: Wanted updates.
1: होप वफा लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च्ड. होप कतर सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स होप वफा लॉयल्टी प्रोग्राम, इंट्रोड्यूसिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव डिजाइन्ड टू स्ट्रेंथन मीनिंगफुल पार्टनरशिप एंड क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज थ्रू लॉयल्टी डिस्काउंट्स ओवर 250 आउटलेट्स इन कतार. Invest Qatar deal to build homegrown AI expertise. Invest Qatar and Brian Co, a Silicon Valley-based applied artificial intelligence company, announced a partnership to accelerate AI adoption across Qatar's public and private sectors through joint pilot programs, talent development and knowledge transfer as the country moves to cement its position as a regional hub for technology and innovation. UDST secures international accreditation for 6 academic programs. The University of Doha for Science and Technology has secured international accreditation for 6 academic programs as its colleges of computing and information technology and engineering and technology from the US-based accreditation board for engineering and technology. The 6 programs earned accreditation after undergoing a rigorous review by 3 ABET commissions under quality standards covering curricula, faculty, student learning outcomes, facilities, and continuous improvement. Olive updates.
2: सावरिया का वो टावल ड्रॉपिंग इनोसेंट बॉय हो
3: जब से तेरे नैना
2: या एनिमल का वो खतरनाक अवतार
4: सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं
2: जिस बंदे ने हमारे दिलों पर और प्लेलिस्ट पर हमेशा राज किया है उसी रॉकस्टार को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूप के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
2: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Geo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

सिंह की आवाज जादू चलाती हुई। अरिजीत सिंह इधर भी हैं। अभी जो अगला गाना मैं आपको बताऊंगी जो कि थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, वहां पे भी हैं। जबरदस्त मैं की चीज सुनियो की दादी की सत्या काल सिमरन कौर आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स आप सुन रहे हो यार।

0: इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको और खेलेंगे
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अब मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाऊं और आप उसको बुझे, अगर आपके अंदर गाने के कीड़े हैं तो आप वो भी शांत कर सकते हो, ठीक है। सो आपको मैं एक चुटकी सॉन्ग सुना रही हूँ और आप मुझे बताइए कौन सा सॉन्ग है। देखो या तो गा के बताइए या बोल के बताइए, बट लिख के मत बताइए, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी लेके आइए। हे सिमरन, और अपना नाम बताने के बाद ये बताइए गाना कौन सा, और भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार वापस सुना रही हूं। चलो फिर इंतजार कर रही हूँ, सुनते रहो रेडियो ओलिव कोर के दरों जियो बिंदास।
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on

0: ब्यूटीफुल ट्रैक और जिस तरीके से अरिजीत सिंह ने गा दिया यार मजा ही आ गया सोने की दादी सिमरन कौर आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: और एक चुटकी सॉन्ग है ये तो क्या कहना है आप लोगों का
3: दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके
0: क्या बात है डेडिकेशन है कि सर आपने अपना नाम ही नहीं बताया नाम तो बताओ दोस्त
4: हेलो हाय सिमरन
0: हाय
4: जी सिमरन कैसे हैं आप
0: बहुत बढ़िया जी
4: जी सिमरन ये गाना है दो दिल मिल रहे हैं दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके
0: करेक्ट बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे

0: बस ब्रेक के उस पार आपके लिए गाना प्ले करूंगी, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गर्गेदरी जियो बिंदास।
1: कुछ आवाजें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो आती है हंसी यादें बनती हैं और हमेशा के लिए रूह में बस जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे प्यारी आवाज, हमारी प्यारी लता दीदी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आज रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं लता मंगेशकर जी के गाने सारा दिन।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

भाग मिल्खा भाग से, और मैं भी भागने वाली हूँ अब. लेकिन मिल्खा सर जितनी दौड़ नहीं लगाने वाली, ना ही मैं लगा सकती हूँ. मैं क्या जी सुनियो कि दादी हाल चाल, सत श्रीकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल. और सिमरन कौर के यहाँ से गल्ली माने का टाइम आ चुका है. लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने

आपको कल शाम को 5 बजे मिलेगी जबरदस्त इवनिंग्स में. अभी के लिए ओवर थिंकिंग मत करिएगा, अच्छे से खा लीजिएगा, अच्छे से पानी पी लीजिएगा. बस इन शॉर्ट खाने में दरवाइश कर दरूर चेहरे दे बड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो.

0: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
3: लुलु, where the world comes to shop.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

number one radio station, Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।